0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

있다.

0: यार मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी बातें हमारे दिल के हाल को बहुत अच्छी तरह से बयां कर ही जाती हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, दिस इज आर्यांशु विद यू। अगर एहसासों की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत एहसास अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ है तो वो है प्यार। और प्यार जो है ना, इंसान को किसी से भी हो सकता है, खुद से, अपने किसी पार्टनर से, अपने बच्चे से, अपने दोस्त से, अपने माता पिता से, कोई भी चीज़ जो आपके बेहद करीब हो। एंड पता है क्या, इसे एक्सप्रेस करना हमेशा ग्रैंड जेस्चर्स को डिमांड नहीं करता। छोटी सी बातें, किसी को याद रहे कि आपको आपकी चाय कैसी पसंद है, घर पहुंचने के बाद कोई आपसे बस यही पूछ ले सेफली पहुंच गए ना। ये जो है काफ़ी लाउड नहीं होता लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। देखो, वक्त बदलता है, लोग जो है बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, जो आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं ना, वो ऑर्डिनरी डेज में भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील कराना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एंड इसी पे मैंने कुछ तो लिखा है, सुनाती हूँ। तुम्हारी याद में कुछ इस तरह खो जाते हैं कि हर तरफ बस तुम ही तुम नजर आते हो। ये मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत चीज है कि दूर रहकर भी लोग बस दिल में बस ही जाते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietva la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
2: हैं मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब?
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: हाउस द जोश,
6: हाय सर,
5: हाउस द जोश,
6: हाय सर।
7: ओ भाई जोश है फुल हाई। और
3: मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।

0: मेरी जिंदगी में तो वेकेशन मोड कहीं ना कहीं ऑन हो चुका है। आपके क्या हाल है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, June का महीना आते ही ना कहीं एक अलग फीलिंग हमारी जिंदगी में आने ही लगती है. नहीं, वैसे देखा जाए तो ये कैलेंडर में सिर्फ शायद एक नया महीना हो, लेकिन हर एक पेरेंट कतर में रहने वाला ये जरूर जानता है कि हमारी जिंदगी में इस वक्त अगर कोई सिलसिला शुरू होता है तो वो है काउंट डाउन का, एंड दैट टू ऑफ समर वेकेशंस. क्योंकि बात इतनी है, बच्चों की छुट्टियों का ऐलान जो है बहुत जल्द होने वाला है, एंड इन दिनों जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हमारी छुट्टियां होती है ना पहले छुट्टियों पर ना हमारा एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन एक बार जो आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो बस छुट्टियां जो है उनकी हो गई. अब आप जो है वेकेशन प्लान नहीं करते, वेकेशंस जो है आपको प्लान किया करते हैं. तो वेल, जून इकलौता ऐसा महीना बचा है जो पढ़ाई लिखाई जो है इस सीजन के लिए जोर शोर से होने वाली है, और इसके बाद अगर जिंदगी में कुछ आएंगे तो वो है समर वेकेशंस. जितना मुझे पता है 2nd of July इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफिशियल स्कूल डे फॉर योर किड्स. तो बढ़िया है, वेकेशन प्लान करना शुरू कर दें. और एक बात तो बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप इन बार छुट्टियों में अपने घर जाएंगे तो घर की मिठाई जो है अंशु के लिए जरूर लेकर आएं. स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. वेल, आज का दिन कतर के लिए बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे राजा यानी कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी का हैप्पी वाला बर्थडे। यार, कभी कभी लीडरशिप ना सिर्फ फैसलों से नहीं बल्कि एहसासों से पहचानी जाती है, और हिज हाइनेस उन्हीं लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ एक नेशन को लीड नहीं किया बल्कि लाखों दिलों को अपना बनाया। हम में से बहुत से लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से कतर आए, लेकिन आज जब हम इस मुल्क को देखते हैं तो सिर्फ एक कंट्री नहीं लगती, ये घर लगता है, हमारा दूसरा घर। और इस एहसास के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हिज हाइनेस की लीडरशिप, उनका विजन और हम सब के लिए एक जैसा प्यार। और यार, हमारे लीडरशिप को हम इस बात के लिए जितना भी थैंक यू कहें ना, वो बहुत कम है। आज मिर्ची वन पर हम दिल से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हिज हाइनेस को लंबी उम्र, बेहतरीन सेहत और बेशुमार खुशियां अता फरमाए। उनकी लीडरशिप में कतर इसी तरह तरक्की करते रहे और दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बने रहे। हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे योर हाइनेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मिर्ची वन। थैंक यू फॉर मेकिंग कतर फील लाइक होम। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Amushai, zindagi badi honi chahiye, lambi nahi.
0: और एड ब्रेक भी. मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: So finally, the D-Day has arrived. Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Anshu with you. Well, jis din ka hame besabri se intezaar tha, finally wo din aaj hamari zindagi mein aa hi gaya. Yaar, pichle kai mahino se na, Qatar ke dher sare bachon ki muskane hum tak pahunch rahi thi. Har photo ke saath एक खुशी थी, एक उम्मीद थी और एक एहसास था. और आज उन्हीं 3,000 मुस्कानों से मिलकर एक खूबसूरत सी कहानी लिख दी गई जो आप तक पहुंचाई जाएगी. और आज से खूबसूरत दिन और हो ही क्या सकता है. आज हमारे राजा जी का बर्थडे. जायनस शेख तमीम बिन हमद अल थानी, आज उनके बर्थडे के खास मौके पर मिर्ची स्प्रेड द स्माइल कैंपेन का होने जा रहा है ग्रैंड रिवील ठीक दोपहर 12 बजे. एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. यार, दिल से हर एक बच्चे का शुक्रिया, हर पेरेंट का, हर स्कूल का, हर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स. यार, ये सिर्फ एक फोटो मोजाइक नहीं है, ये 3,000 दिलों का प्यार जो आज एक तस्वीर की शक्ल में दुनिया के सामने आएगी. एंड अगर आपने भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है, अपने बच्चों की फोटो अपलोड की है, तो रिवील के बाद बिल्कुल आप mirchi1qatar.com पर जरूर जाएं और इस यादगार मोज़ेक में अपने लिटिल स्टार को, उसकी खुशी स्माइल को ढूंढने की कोशिश जरूर करें. और अगर मिल जाए तो हमें 5001896 पर जरूर बताना. वो कहते हैं ना, हजारों चेहरों की खुशी को हमने एक साथ सजाया है, हर मुस्कान ने मिलकर एक खूबसूरत सपना बनाया है. आज जब पर्दा उठेगा इस तस्वीर से, तो हर दिल कहेगा ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये एक प्यार का नजराना है. स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन कतर.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन कतर विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: कौन है?
3: स्टेन।
2: स्टेन कौन?
3: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
4: खट खट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यार सच कह रही हूँ, अपनी फोन की बैटरी को ना इस वक्त तगड़ा कंपटीशन देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station and this is RJ Anshu with you. मैं तो बस उन्हीं फोन्स की बात कर रही थी जो अक्सर कंप्लेन दिया करते हैं कि हाय इनकी बैटरी जो है बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फोन में ये प्रॉब्लम है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आपकी जिंदगी में, जरा 10 मिनट या 5 मिनट बाहर खड़े होकर देखो अपने फोन से पहले ड्रेन जो है ना आप दोगे। अरे नाना इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, सूरज चाचू को जाता है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: हाँ जी आपका नाम भी जानते हैं, आपका काम तो बहुत अच्छी तरह से देख ही रहे हैं। Having said that, अगर आज के टेम्परेचर को मैं देखने की कोशिश करूं, so it's going to be around 44, minimum is going to be around 35. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एसी के रिमोट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, सनस्क्रीन को भी, लेकिन हाँ जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कुछ शामिल हो अंशु के अलावा तो वो है पानी। मैं पानी पानी पीती रहूं और आप भी पीते रहें। Stay tuned to Mirchi. बंदी का नाम अंशु।
4: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

0: Mirci. Iskabala, uskabala, sakabala. Yabala. Murga, murga. La virba la murga. Mirci, murga.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है
2: साहब जी, कुछ ऐसे तो गलत बात है साहब जी, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था, जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1.
10: It's hot.

0: बस डुबकी लगाने की तैयारी शुरू कर ही लें।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो गर्मी अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इसके साथ कतर का मरीन सीजन भी फुल स्विंग में वापस आ चुका है और अब बीचेस पर फिर से सब कुछ लाइवली होने वाला है। डाइवर्स आर रेडी, स्विमर्स आर रेडी और हम जैसे लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं जो शाम को समंदर के पास बैठ कर बस हवा को फील करना चाहते हैं। वैसे एक बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि कतर के समंदर में सिर्फ फिश और कोरल ही नहीं, यहाँ कुछ अंडर वाटर स्पॉट्स पर ओल्ड पर्ल डाइविंग रूट्स के ट्रेसेस आज भी पाए जाते हैं। देखो यार, ऑयल एंड स्काईस्केपर्स के पहले कतर की इकोनॉमी पर्ल्स पर चलती थी। डाइवर्स घंटों तक समंदर में जाकर मोती ढूंढा करते थे एंड आज भी कोई ना कोई उसका ट्रेस उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है। सो टेक्निकली कतर का समंदर सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि हिस्ट्री को भी छुपाए बैठा है। भाई, समंदर की लहरें भी क्या कमाल करती हैं, किनारों से टकरा कर भी सफर जारी रखती हैं। शायद जिंदगी भी कुछ इनके जैसी ही लगती है, हर दफा रुक कर भी हिम्मत से आगे बढ़ती। वेल, मरीन सीजन को एंजॉय करिए बट रिस्पॉन्सिबली। हाइड्रेशन, सेफ्टी चेक्स, प्रॉपर गाइडेंस स्पेशली ड्यूरिंग डाइविंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ एक्साइटिंग सफर पे निकले तो मुझे साथ लेके जाना, मजा आए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मंदी का नाम अंशु, एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026. एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al-Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al-Goot Insurance. Visit Al-Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ. एलिगेंट डिजाइन, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: दोस्ती का कुछ सुले मैडम. नो सॉरी, नो थैंक यू.
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: दशकों, ये दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aryan Show with you. वैसे अगर मैं इस खूबसूरत से रिश्ते को नाम देने की कोशिश करूं तो दुनिया इसे माँ कहती है, लेकिन सही मायने में यह हमारी जिंदगी में कई रोल अदा कर जाती है। कभी वो हमारी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, कभी टीचर, कभी चीयर लीडर, और कभी वो सुपर हीरो जो खुद शायद कभी थक भी जाए लेकिन अपने बच्चों को कभी थकने नहीं देती। और इसी प्यार, इसी बॉन्ड और इसी खूबसूरत कनेक्शन को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने का मौका आ चुका है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बार फिर से सॉलिड एंट्री कर रहा है मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। Well, absolutely, you heard that right. जितनी भी सुपर मॉमीज इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वक्त आ चला है कि सुपर मॉमी यानी कि मिर्ची मॉमी का क्राउन जो है आप अपने सर पे सजाने की तैयारी कर ही लें। Well, अगर आपको लगता है कि आपको फिफ्थ एडिशन में पार्टिसिपेट करना है, इस मैग्नानिमस इवेंट का हिस्सा बनना है एंड बहुत सारी खूबसूरत यादें अपनी जिंदगी में शामिल करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से बस एक मिनट का वीडियो बनाना है अपने बच्चे के साथ। ये डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई फन वीडियो हो सकता है, या सिर्फ एक ऐसा मोमेंट जो आप दोनों के बीच प्यार और इस खूबसूरत से रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। वीडियो बनाने के बाद फटाफट से भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हिच इज 5000 1896 पर। एंड अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो में वो ताकत है जो कि हर एक माँ के अंदर जरूर होता है, तो 101% आपको ऑडिशन पे बुलाया जाएगा एंड अगर आप सिलेक्ट हुए तो ग्रैंड फिनाले पे आप पहुंच ही जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मौका जो है एक बार फिर से आपके रास्ते दस्तक दे रहा है, फटाफट से वीडियो भेजिए और इस मैग्नानिमस इवेंट का हिस्सा बनने की तैयारी कर ही दीजिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: चले कल से मुलाकात जरा आज ही कर लें।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajayan Show with you. Well, अगर आपको भी लगता है कि कतर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा बल्कि फ्यूचर बिल्ड भी कर रहा है तो बस एक ऐसा इवेंट जो इस बात में अपनी मोहर लगाने वाला है उसका नाम है प्रोजेक्ट कतर 2026. Absolutely, प्रोजेक्ट कतर 2026 is back and guess what? This is the 22nd edition and this is going to be one of the biggest and most prestigious construction and infrastructure exhibitions in the region. 9th of June से लेकर 11th of June तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में दुनिया भर के इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स एंड साथ ही इंडस्ट्री लीडर्स एक ही रूफ में आपको नजर आएंगे. एंड सबसे खास बात यह है कि इस बार का एडिशन सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, ये वो जगह है जहां आप अपने फ्यूचर को शेप होते हुए देख सकते हैं विद स्मार्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, एडवांस्ड इंजीनियरिंग आइडियाज, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मोर. एंड सबसे खास बात यह है कि इस बार के अगर फोकस को देखने की कोशिश करें तो ये पूरी तरह से इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, कतर्स पाथ टू 2030. मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स की बात हो नहीं रही है बल्कि ऐसे आइडियाज की बात हो रही है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर और स्मार्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए फ्यूचर से जाकर मुलाकात आज ही कर लेते हैं. स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन कतर.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन कतर विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: अर्ज किया है
3: इरशाद।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Mirchi ghadi mein is waqt baj rahe hain 8. Sunte rahiye 89.6. Mirchi 1, it's hot.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: सो फाइनली द डी डे हैज अराइव्ड।
2: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो दिन आज हमारी जिंदगी में आ ही गया। यार पिछले कई महीनों से ना कतर के ढेर सारे बच्चों की मुस्कानें हम तक पहुंच रही थी। हर फोटो के साथ एक खुशी थी, एक उम्मीद थी और एक एहसास था। और आज उन्हीं 3000 मुस्कानों से मिलकर एक खूबसूरत सी कहानी लिख दी गई जो आप तक पहुंचाई जाएगी। और आज से खूबसूरत दिन और हो ही क्या सकता है। आज हमारे राजा जी का बर्थडे, जायनस शेख तमीम बिन हमद अल थानी। आज उनके बर्थडे के खास मौके पर मिर्ची स्प्रेड द स्माइल कैंपेन का होने जा रहा है ग्रैंड रिवील ठीक दोपहर 12 बजे। एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। यार दिल से हर एक बच्चे का शुक्रिया, हर पेरेंट का, हर स्कूल का, हर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स। यार ये सिर्फ एक फोटो मोजाइक नहीं है, ये 3000 दिलों का प्यार है जो आज एक तस्वीर की शक्ल में दुनिया के सामने आएगी। एंड अगर आपने भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है, अपने बच्चों की फोटो अपलोड की है, तो रिवील के बाद बिल्कुल आप mirchi1qatar.com पर जरूर जाएं और इस यादगार मोज़ेक में अपने लिटिल स्टार को, उसकी खुशी, स्माइल को ढूंढने की कोशिश जरूर करें। और अगर मिल जाए तो हमें 5001896 पर जरूर बताना। वो कहते हैं ना, हजारों चेहरों की खुशी को हमने एक साथ सजाया है, हर मुस्कान ने मिलकर एक खूबसूरत सपना बनाया है। आज जब पर्दा उठेगा इस तस्वीर से, तो हर दिल कहेगा ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये एक प्यार का नजराना है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
3: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
1: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
1: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
1: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
1: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
1: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
1: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
1: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
3: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
3: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे, बता रहा हूँ आपको।
3: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भाई साहब, थ्री इडियट्स तो पता थे, ये फोर्थ इडियट कहाँ से आया?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार, एक ऐसी फिल्म जिसने हमारी जिंदगी में सक्सेस की डेफिनेशन एंड परसेप्शन दोनों को बदल के रख दिया, तो उसका नाम है थ्री इडियट्स. डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी. एंड क्या कमाल की स्टोरी, रांचो, फरहान एंड राजू, जो आज भी हमारे दिल में बसी हुई है और एक ही बात हमसे दोहराती है, ऑल इज वेल. वेल, क्या आपको इस फिल्म के बारे में एक खास बात पता है? द इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो इस फिल्म में हमें दिखाया गया, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इसकी पूरी की पूरी शूटिंग जो है वो IIT मुंबई में हुई, लेकिन ना, इस फिल्म की शूटिंग के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस यूज किए गए थे, जिसमें IIM बैंगलोर शामिल है, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे तो है ही है. लेकिन एक और खास बात इस वक्त आपको ये बता दूं, थ्री इडियट्स का सीक्वल तो बिल्कुल आने के लिए तैयार है, स्टोरी पे वर्क किया जा रहा है, लेकिन राजकुमार हिरानी ने कहीं ना कहीं एक हिंट दिया है कि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे फोर्थ इडियट भी हो ही सकता है. और ऐसा माना जा रहा है कि विक्की कौशल कुड बी द फोर्थ इडियट. आपकी क्या राय है इसमें? फोर्थ इडियट हो तो आखिरकार कौन हो या बिल्कुल भी ना हो? 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aryanshu with you. माँ, बस इन्हीं की बात कर रही हूं मैं, हमारे हर सवाल का जवाब. यार ये वो है जिसकी डांट में भी मिठास है, ये वो है जिसकी नाराजगी में भी प्यार है, ये वो है जो हमें गिरने से पहले ही संभाल लेती है, और ये वो है जो हर मुश्किल में सबसे पहले हमें हाथ देती है. हमारे हर सवाल का जवाब, हमारी हर दुआ का आकार, और एक बच्चे की जिंदगी का सबसे खूबसूरत किताब. कहते हैं ना, जिंदगी में अगर माँ को सेलिब्रेट ना किया तो फिर क्या ही किया. एंड इसका मौका इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में कोई लेकर आया है तो वो है मिर्ची वन कतर विथ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5. वेल एब्सोल्युटली हर्ड दैट राइट. इसका आगाज जो है हो चुका है, बहुत जल्द ऑडिशंस आपकी जिंदगी में शामिल होने वाले हैं. डेट जो है जरा सी एक्सटेंड की गई है, तो अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 का हिस्सा बनना है तो फटाफट से एक ही काम करना है, जल्दी से एक वीडियो बनाना है अपने बच्चे के साथ. एक ऐसा वीडियो जो डिपिक्ट करेगा आपका एक खूबसूरत सा बॉन्ड जो आप अपने बच्चे के साथ शेयर करते एंड भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896. जल्दी से जल्दी भेजें क्योंकि ऑडिशंस की तारीख जो है बेहद करीब आ चुकी है. एंड इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए तो ना ही सिर्फ ग्रैंड फिनाले में आप पहुंच जाएंगे, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सुपर मॉमी मिर्ची मॉमी का ताज जो है इस वक्त आपके सर पे सज ही जाए. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर एंट्रीज. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु.
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन June 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

किसी और को कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Radio Mirchi. वैसे तो it's hot, लेकिन आज के रेट को देखने की कोशिश करें तो मौसम के साथ साथ ये भी बड़ा ही हॉट है. एंड देखिए ना, इसके फ्लक्चुएट होने से हमारे इमोशंस जो है किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, खासकर जब पता हो कि अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं हैं, तो भी ये आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से पता है. लेकिन अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.05, पाकिस्तानी रुपीज 76.81, बांग्लादेशी टाका 33.68, नेपाली रुपीज 41.59 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 90.82. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय.

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन कतर डॉट कॉम पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन कतर विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: अर्ज किया है
3: इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: Cut, cut.
2: Who that?
1: Jassi.
2: Jassi? Kaun si wali Jassi?
1: Jassi who has come, aunty ji?
2: Cut, cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशन.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center. Mirchi, fresh maal.
3: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यार ये छोटी सी जो बात है ना, बहुत बड़ा असर छोड़ती है।
2: Mirchi Anshu.
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings, and this is Aarti Anshu with you. यार पता है क्या? बचपन से ही ना पापा मुझसे एक बात कहा करते थे कि आप किसी को देखकर उनकी जिंदगी का पता नहीं लगा सकते। शायद जो इंसान हमेशा हंसता हुआ दिखता है, अंदर से बहुत टायर्ड हो, जो नॉर्मली रिप्लाई करता है, मे बी इज फाइटिंग बैटल्स नोबडी नोज अबाउट, और इसलिए किसी को जाने पहचाने बगैर किसी कंक्लूजन में निकलना ये बहुत गलत बात है। लेकिन पता है क्या, इन सबसे ऊपर सबसे खास फीलिंग क्या है? किसी के दर्द को समझने की शक्ति रखना, जिसे हम एम्पथी कहते हैं। कभी कभी लोगों को सोल्यूशंस नहीं चाहिए होते, बस ऐसा कोई शख्स चाहिए होता है जो उन्हें समझ सके। A little softness, a little patience, a little understanding. और इसकी शुरुआत सबसे पहले आपके घर से होती है। हमेशा प्रैक्टिकल होना किसी बात का सलूशन नहीं है। किसी के जज्बात को बस समझ उसे अपना लेना सबसे बड़ा आंसर है। वो कहते हैं ना, हर किसी से दर्द को समझा नहीं जाता, हर किसी से दिल का रिश्ता भी नहीं बनता। जो लोग खामोशी से साथ निभा जाए, उनसे खूबसूरत कोई इंसान दुनिया में नहीं होता। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
3: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virpa la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ। आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है।
3: कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आगे वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं

0: हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
0: रुकिए, आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। मैं अचानक ऐसे हो गया रात, वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
0: मैं कहाँ रहा हूँ?
1: सॉरी, आप अभी कहाँ पर हो?
0: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
0: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
0: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
3: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
2: अभी कॉल करें 3100-0813।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
2: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: गुड मॉर्निंग सन, दिस इज आर्यांशु विद यू। वैसे अगर मैं इस खूबसूरत से रिश्ते को नाम देने की कोशिश करूं तो दुनिया इसे माँ कहती है, लेकिन सही मायने में यह हमारी जिंदगी में कई रोल अदा कर जाती है। कभी वो हमारी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, कभी टीचर, कभी चीयर लीडर, और कभी वो सुपर हीरो जो खुद शायद कभी थक भी जाए लेकिन अपने बच्चों को कभी थकने नहीं देती। और इसी प्यार, इसी बॉन्ड और इसी खूबसूरत कनेक्शन को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने का मौका आ चुका है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बार फिर से सॉलिड एंट्री कर रहा है मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। वेल, एब्सोल्युटली यू हर्ड दैट राइट। जितनी भी सुपर मॉमीज इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वक्त आ चला है कि सुपर मॉमी यानी कि मिर्ची मॉमी का क्राउन जो है आप अपने सर पे सजाने की तैयारी कर ही लें। वेल, अगर आपको लगता है कि आपको 5th edition में पार्टिसिपेट करना है, इस मैग्नानिमस इवेंट का हिस्सा बनना है एंड बहुत सारी खूबसूरत यादें अपनी जिंदगी में शामिल करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से बस एक मिनट का वीडियो बनाना है अपने बच्चे के साथ। ये डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई फन वीडियो हो सकता है, या सिर्फ एक ऐसा मोमेंट जो आप दोनों के बीच प्यार और इस खूबसूरत से रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। वीडियो बनाने के बाद फटाफट से भेज देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896 पर। एंड अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो में वो ताकत है जो कि हर एक माँ के अंदर जरूर होता है, तो 101% आपको ऑडिशंस पे बुलाया जाएगा एंड अगर आप सिलेक्ट हुए तो ग्रैंड फिनाले पे आप पहुंच ही जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मौका जो है एक बार फिर से आपके रास्ते दस्तक दे रहा है, फटाफट से वीडियो भेजिए और इस मैदान में सुबह का हिस्सा बनने की तैयारी कर ही दीजिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: यार सच कहूँ, ये दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: Restaurant partner Chaska Restaurant. Chinese, Mumbai ho ya North Indian ka craze. Budget mein chahiye tasty dish? To chaliye Chaska Restaurant. Jo hai Esdan Oasis mein. Swaad bhi zabardast aur price bhi mast.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with Hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. वेल आज का दिन कतर के लिए बहुत ही ज्यादा खास क्योंकि आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे राजा यानी कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी का हैप्पी वाला बर्थडे। यार कभी कभी लीडरशिप ना सिर्फ फैसलों से नहीं बल्कि एहसासों से पहचानी जाती है और हिज हाइनेस उन्हीं लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ एक नेशन को लीड नहीं किया बल्कि लाखों दिलों को अपना बनाया। हम में से बहुत से लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से कतर आए लेकिन आज जब हम इस मुल्क को देखते हैं तो सिर्फ एक कंट्री नहीं लगती ये घर लगता है हमारा दूसरा घर और इस एहसास के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हिज हाइनेस की लीडरशिप उनका विजन और हम सब के लिए एक जैसा प्यार। और यार हमारे लीडरशिप को हम इस बात के लिए जितना भी थैंक यू कहें ना वो बहुत कम है। आज मिर्ची वन पर हम दिल से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हिज हाइनेस को लंबी उम्र बेहतरीन सेहत और बेशुमार खुशियां अता फरमाए। उनकी लीडरशिप में कतर इसी तरह तरक्की करते रहे और दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बने रहे। हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे योर हाइनेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मिर्ची वन। थैंक यू फॉर मेकिंग कतर फील लाइक होम। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार यूं ही थोड़ी ना कहा गया है कि वक्त रेत की तरह है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. आपने ना कई दफा लोगों से कहते हुए सुना होगा कि वक्त जो है रेत की तरह है, कैसे फिसलता है ये बात पता ही नहीं चलती। और इसे रोक पाना जो है ये काफी मुश्किल होता है, खासकर जब ये फिसल रहा हो। लेकिन शायद इसी रेत से ना जाने हमने कितने खूबसूरत कारनामे भी किए, इतनी बेहतरीन डिजाइन बनाई, न जाने कितनी इमारतों की, घरों की इसने नींव यानी कि फाउंडेशन भी रखी है। तो बस हमारी जिंदगी का ये जो वक्त है ना, हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत डिजाइन बना सकता है, हमारी जिंदगी की नींव यानी कि इस फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बना सकता है। माना कि फिसल रहा है, लेकिन इसे सही शेप देते हुए इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ये तो हमारे हाथ में है ना। तो क्यों ना अपने जिंदगी के हर एक पल को, हर एक घड़ी को इतनी खूबसूरती से जिए कि जब जिंदगी की कहानी लिखे और वो लोगों तक पहुंचे ना, हाय जिनके जहन में डिजाइन बन के उभरे वो सबसे खूबसूरत हो, फिसलती हुई नहीं, एक प्यारी सी आकार को अपने अंदर संजोए हुए। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन Qatar विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
3: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
2: खट खट, हो दैट।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi ghadi mein baj rahe hain 10. Aap sun rahe hain Mirchi One Qatar.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: दो जून की रोटी वाले जोक्स खत्म हो गए हों तो आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जो मर्द है ना उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नीचे पे ट्यून इन हुआ पर इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली यार हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ही तो हमने देखा है कि जो मर्द गण है वो भले ही 40-50-60 साल के हो जाएं लेकिन वो हीरो के तमगे के साथ ही ऑन स्क्रीन नजर आते हैं और उनके साथ एक 20-22 साल की हीरोइन दे दी जाती है एज अ को-स्टार। सो दैट्स व्हाई आई सेड हमारी सोसाइटी में भाई मर्द गण भले ही एज में बड़े हो रहे हों लेकिन ना तो उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं, ना ही उनके बाल सफेद होते हैं और ना ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो सिर्फ महिलाओं के साथ होती है ना। तभी तो कैन फिल्म फेस्टिवल में जब ऐश्वर्या राय इस बार आई तो भाई उनको ट्रोल कर दिया गया। टू विच नाउ माधुरी दीक्षित हैज स्लैम्ड सच पीपल कि भाई आप एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग रिमार्क्स जो हैं वो देना बंद कीजिए बिकॉज शी इज अ ग्लोबल स्टार। बट क्या करें माधुरी मैम, हमें ही मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के मर्दगण उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते, वो तो और जवान होते जाते हैं यार, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
1: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
1: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
0: सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
1: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
2: अथॉरिटी से किससे?

0: इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: तो कोई बात नहीं होती, हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे तो हमें क्यों पकड़ेंगे?
0: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
1: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
0: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
1: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
0: नहीं, मेरे को दिए आपने?
1: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
0: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
1: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
0: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई, वो तेरा जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है,
1: साहब जी को ऐसे कैसे हो सकता है?
0: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
1: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
0: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछे भाई।
1: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
0: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
1: हाँ जी।
0: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: गलती होगी साहब जी।
0: कान पकड़,
1: पकड़ ले।
0: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, Mirchi 1. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। YRF के स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म अल्फा को लेकर एक मेजर अपडेट मिला है। बेसिकली ये फिल्म जो पहले 10th ऑफ जुलाई को रिलीज होने वाली थी, वो अब 3rd जुलाई को ही आएगी। सो द थिंग इज कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी जो है वो 17th को रिलीज होने वाली है, अलॉन्ग विद हिंदी फिल्म धमाल 4। तो अब ये फिल्म जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल्स में नजर आने वाली हैं, वो जब 3rd ऑफ जुलाई को ही आएगी इन द थिएटर्स, तो उसको बॉक्स ऑफिस पे पूरे के पूरे 2 हफ्ते मिल जाएंगे टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। वेल, अब डार्लिंग्स मूवी की डायरेक्टर को लेके एक नया अपडेट बताना चाहती हूँ। बेसिकली जसमीत के रीन इज द पर्सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आपको द रॉयल्स ये सीरीज तो याद होगी, जिसमें ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर लीड रोल में नजर आए थे। सो रिपोर्ट्स हैव इट दैट इस रोमांटिक कॉमेडी के सीजन 2 के डायरेक्शन की कमान इस बार जसमीत के रीन को मिला है। बाकी ये सीरीज फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन में है, जुलाई से इसके शूट की शुरुआत होने की संभावना है, और जैसे ही बाकी की डेट्स पता चलेंगी आपको जरूर बताऊंगी। भाई, फिल्म मेकर शेखर कपूर और म्यूजिक मास्ट्रो AR रहमान ने एक नया कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। सो मासूम द न्यू जनरेशन इज द फिल्म दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, जो शेखर कपूर की 1983 क्लासिक से इंस्पायर्ड होगी। ये फिल्म फैमिली, आइडेंटिटी, लव एंड माइग्रेशन को एक्सप्लोर करने वाली है इन अ कंटेम्प्रेरी सेटअप, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, मनोज बाजपेयी, नित्या मेनन एंड कावेरी कपूर जैसे लोग नजर आने वाले हैं। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची फ्रेश माल
1: फुल ऑन मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: प्यारी रे। 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: डर्टी माइंड, मैं तो गेम खेलने की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? सो यू नो द ड्रिल, इट्स टाइम फॉर फाइंडिंग मिर्ची फिल्म जी, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू स्लाइड इनटू माय डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम, सेंड मी योर नंबर, जिसके बाद इस गेम की शुरुआत हम कॉल पे करते हैं। तो आज के इस गेम की शुरुआत करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है प्रगति। विराट कोहली का निकनेम चीकू है, चीकू की बीवी का नाम क्या है?
3: अनुष्का।
0: अनुष्का शर्मा की फिल्म जिसमें वो जैज सिंगर बनी है?
3: या इट इज बॉम्बे वेलवेट।
0: बॉम्बे वेलवेट के मेल लीड का नाम क्या है?
3: बॉम्बे वेलवेट के मेल लीड वाज रणबीर।
0: रणबीर कपूर को एक तरफा प्यार किस फिल्म में होता है?
3: ऐ दिल है मुश्किल, राइट, दैट्स द मूवी नेम।
0: यस, ग्रेट। ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर किसके साथ अनुष्का को जलाने के लिए डिनर पे मिलते हैं?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर की माँ बनी है?
3: एक्शन रिप्ले
0: में ऐश के हस्बैंड का रोल किसने किया है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में बच्चा पालते हैं?
3: हे बेबी
0: में बच्चा किसका होता है?
3: हे बेबी में बच्चा विद्या बालन।
0: ग्रेट। विद्या बालन की कौन सी फिल्म रियल लाइफ मर्डर पे बेस्ड है?
3: नो वन किल जैसिका।
0: ग्रेट। नो वन किल जैसिका में रिपोर्टर का रोल किसका होता है?
3: रानी मुखर्जी।
0: ग्रेट। रानी मुखर्जी किस फिल्म में लोगों को चूना लगाती हैं?
3: बंटी और बबली।
0: ग्रेट। बंटी और बबली में बंटी कौन है?
3: बंटी और बबली में बंटी इज अभिषेक।
0: अभिषेक बच्चन फ्लैट के चक्कर में गे होने की एक्टिंग किस फिल्म में करते हैं?
3: दोस्ताना। या
0: ओके, दोस्ताना की देसी गर्ल कौन है?
3: दोस्ताना की देसी गर्ल इज प्रियंका चोपड़ा गिल।
0: प्रियंका चोपड़ा की हिंदी फिल्म जिसमें वो सिडक्टिव विलन बनी है? सात खून माफ इज नॉट द मूवी, बट अगर आपको पता है कि ये फिल्म कौन सी है, देन यू कैन कंटिन्यू द गेम विद मी। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टा पे मिलिए, वहां मेरे डीएम में अपना नंबर भेजिए, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन Qatar विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: खट खट,
3: कौन है?
2: अज्जू।
3: अज्जू कौन?
2: अज्जू ना आए बाल मां, सावन बीता जाए। होए
3: खट खट, हु दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: It's time to find Mirchi for Lunchy. Shruti, Shruti,
1: Shruti. Main to badi filmi hu.
0: Mirchi pe tune in ho aap. And if you are an avid listener of my show, then you already know ki it's time ki main Mirchi for Lunchy dhoondu. So basically the drill is ki aapko mere Instagram pe jaake DMs mein slide in karke apna number bhejna hota hai. Then I call you and play the game. Jiski shuruaat aaj Pragati ke saath hui. But Pragati ek point pe atak gayi. Aur uske aage ka game khelne ke liye mere saath abhi telephone line pe hai Ruchi. तो मैं एक बार फिर से ये सवाल आपके लिए रिपीट करती हूँ. तो प्रियंका चोपड़ा की हिंदी फिल्म जिसमें वो सेडक्टिव विलन बनी है.
2: ऐतराज.
0: ग्रेट. ऐतराज की सेकंड फीमेल लीड का नाम क्या है?
2: करीना.
0: बहुत ही बढ़िया. करीना कपूर की फिल्म जिसमें आर माधवन भी हैं.
2: थ्री इडियट्स.
0: थ्री इडियट्स में रैंचो का रोल किसने किया है?
2: आमिर खान.
0: आमिर खान किस फिल्म में चोर बने हैं?
2: धूम थ्री.
0: ऑसम. धूम थ्री में कमली कौन होता है?
2: कटरीना.
0: कटरीना कैफ की फिल्म जिसमें टोमेटिना फेस्टिवल मनाते हैं लोग.
2: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दैट्स नॉट फनी डायलॉग किसका है?
2: ऋतिक रोशन.
0: ऑसम. ऋतिक रोशन किस फिल्म में बच्चों वाला स्कूटर चलाते हैं?
2: कोई मिल गया.
0: कोई मिल गया की फीमेल लीड का नाम क्या है?
2: प्रीति जिंटा.
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें उनको बॉर्डर वाला प्यार होता है?
2: शाहरुख खान.
0: यस.
2: वीर जारा.
0: ऑसम. वीर जारा में वीर के पापा का रोल किसने किया है?
2: अमिताभ बच्चन.
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो भगवान यानी कि गॉड बने हैं?
2: गॉड तुसी ग्रेट हो.
0: ऑसम. गॉड तुसी ग्रेट हो के मेल लीड कौन है?
2: सलमान खान.
0: सलमान खान का टावल वाला डांस किस फिल्म में है?
2: हाँ, मुझसे शादी करोगी.
0: ऑसम. मुझसे शादी करोगी में कर्नल का रोल किसने किया है?
2: अमरीश पुरी.
0: अमरीश पुरी सिमरन को अपनी जिंदगी जीने के लिए किस फिल्म में बोलते हैं?
2: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
0: ग्रेट. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन को स्टॉक कौन करता है?
2: शाहरुख खान.
0: बहुत ही उम्दा. तो इसी के साथ आपको भी मैं ये टैग देना चाहती हूँ.
3: मिर्ची फिल्मची.
0: वैसे बहुत सारे लोगों ने नाक मुंह बनाया होगा इस बात पे कि यार शाहरुख ने स्टॉक कहाँ किया था, वो तो प्यार का अंदाज था उसका. बट नहीं ब्रो, उसको स्टॉकिंग ही बोलते हैं. एनीवे, दैट इज ऑल आई हैव इन फाइंडिंग मिर्ची फिल्म जी फॉर टुडे. बट कल ये गेम एक बार फिर से चालू जरूर होगा. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. मैं हूँ आपके साथ श्रुति. इट्स ऑल.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.

0: दिस इज द नीड ऑफ द आवर.
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय. मैं एक कॉन्वर्सेशन की बात कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम कॉन्वर्सेशंस करना तो भूल ही जाते हैं यार. एंड यू नो व्हाट, हमेशा कंफर्टिंग कॉन्वर्सेशंस ही सही नहीं होती हैं. कुछ कॉन्वर्सेशंस आपको रियलिटी चेक भी देती हैं. और अचानक से ये कॉन्वर्सेशंस की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आज के पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे सीन्स लेकर आई हूँ जहाँ कॉन्वर्सेशन प्लेड अ मेजर रोल. तो चलो लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद द मूवी वेक अप सिड. वेल, इस फिल्म में एक सीन है जहां आयशा और सिड के बीच एक हैवी कॉन्वर्सेशन होती है ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट एंड चाइल्डिश. जहां आयशा एक इंडिपेंडेंट वुमन है, वो जानती है कि किस तरीके से अपने बाउंड्रीज सेट करना है और वो लोगों को इस तरीके से चीजें समझाती है कि सामने वाला डिस्कम्फर्ट फील नहीं करता उसकी बातों से. एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन जो सिड के साथ वो छत पे कर रही होती है, वो उसको बताती है कि किस तरीके से इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट. वेल, टॉकिंग अबाउट दिस मूवी वेक अप सिड, इट इज सच एन इनसाइटफुल फिल्म कि क्या ही बताओ. मतलब एक महिला को दिखाया गया है हु हैज एजेंसी ऑफ अथॉरिटी और उसका एग्जिस्टेंस इस फिल्म में सिर्फ उस मर्द को, उस मैन को फिक्स करना नहीं है. खैर, ऐसी ही कुछ और चार कॉन्वर्सेशनल सीन्स की होगी बात, बट इन अ वाइल्ड टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति.

0: herkes çok eganay sana.
1: Milçi.
2: İskabana, uskabana, sakabana.
3: Rabbana.
2: Murga, murga. La vid bala murga.
3: Milçi, murga.
4: Aga.
5: Hello.
6: Madam, disturbance aa rahi hai kya abhi?
5: हेलो डिस्टर्बेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे
6: हैं? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
5: हेलो
6: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए मैडम, डिस्टर्बेंस अभी आ रही है।
5: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
6: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ, आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
5: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
6: मोबाइल पे
5: और क्या,
6: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
5: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
6: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
5: आपको बताना चाहिए था ना
6: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
5: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब।
6: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
5: आपका दिमाग खराब,
6: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
5: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
6: नवेद लिखिए, नवेद
5: आ रही है।
7: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
9: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
8: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
10: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
8: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
11: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी, ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
12: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
1: Mirchi. Fresh Maa.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: भाई इसके बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं कॉन्वर्सेशंस की बात कर रही हूँ, बातचीत की बात, जिसके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है यार। लेकिन वी आर समवेयर डाउन द लाइन मूविंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करना उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। बट ऐसे में कॉन्वर्सेशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझाने के लिए मैंने हिंदी सिनेमा का सहारा लिया है। एंड आई हैव गॉट यू सम 5 मूवीज जिनके ये 5 सीन इतने एपिक हैं दैट आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कॉन्वर्सेशन की क्यों इतनी जरूरत होती है। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी वेक अप सिड, एंड उसमें आयशा और सिड की वो कॉन्वर्सेशन ऑन द टेरेस। अब बात करते हैं फिल्म गहराइयां के बारे में, जिसमें दीपिका पाडुकोन के कैरेक्टर अलीशा की कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है विद हर फादर प्लेड बाय नसरुद्दीन शाह। वेल दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, जो अपनी बेटी को समझाता है कि वो किस तरीके से अपने इनर चाइल्ड को हर्ट नहीं कर सकती। एंड दिस सीन इज ट्रूली रिमार्केबल इन द सेंस दैट वी आर ऑफन टोल्ड कि भाई दूसरे को फॉरगिव कर दो, बट हमें कोई ये नहीं समझाता कि अपने आप को फॉरगिव करना, माफ करना कितना ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब नंबर 3 पे बात करते हैं फिल्म कपूर एंड सन्स से टिया और अर्जुन के उस कॉन्वर्सेशन की जो ग्रेवयार्ड में हुई थी। टिया प्लेड बाय आलिया भट्ट एंड अर्जुन यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन है जहां दो लोग एक दूसरे से बिना किसी हेजिटेशन के बात कर रहे होते हैं, दैट टू इन अ ग्रेवयार्ड। सो ऑल इन ऑल द कंफर्ट एंड ऑनेस्टी दैट दीज टू पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर हैव इन दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन इज अमेजिंग। वेल आपके लाइफ में कौन है वो इंसान जिससे आप ये अच्छी वाली कॉन्वर्सेशंस करते हो? डू लेट मी नो अबाउट दैट। हाँ, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, 9930983983 नंबर है। Meanwhile, stay tuned to Mirchi with this ladki badi filmi, jiska naam hai Shruti.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भाई इस चीज के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, मैं कॉन्वर्जेशन की बात कर रही हूँ जिसके बिना आई जस्ट कांट सस्टेन। मतलब अगर मुझे किसी पे गुस्सा भी आया होता है ना, देन आई एम लाइक कि भाई बातचीत करके खत्म करते हैं, ऐसे चुप रहेगा ना कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू बिल्ड अप मोर एंगर फॉर ईच अदर। और अचानक से कॉन्वर्जेशन की बात इसलिए चल रही है क्योंकि हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे कॉन्वर्जेशन इतने इम्पैक्टफुल लगे हैं मुझे दैट उनको डिस्कस करना मुझे जरूरी लगता है। इसीलिए आज का पांच का पंच की लिस्ट इज डेडिकेटेड टू सच कॉन्वर्सेशंस। तो चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर चार पे बात करना चाहूंगी राणा और पीकू के कॉन्वर्सेशन की इन द मूवी पीकू। और इस मूवी से मेरा फेवरेट सीन इज जहां इन दोनों के बीच वो कॉन्वर्सेशन होती है ना, जब पीकू बोलती है विदाउट एनी फियर जो भी वो फील करती है अपने पेरेंट्स के बारे में आफ्टर एन एज दैट हाउ दे बिहेव लाइक चिल्ड्रन और किस तरीके से हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली स्टेड विद मी फॉरएवर। चलो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द मूवी डियर जिंदगी, जिसका एक पर्टिकुलर सीन है जहां जग प्लेड बाय शाहरुख खान, कायरा प्लेड बाय आलिया भट्ट को एक साइकिल राइड पे लेकर जाते हैं। एंड उस पर्टिकुलर सीन में आलिया भट्ट पूछती है शाहरुख खान से कि भाई ये अचानक हम साइकिल से क्यों घूम रहे हैं। देन शाहरुख सेज दैट इट इज गुड टू ब्रेक पैटर्न्स। तो यहां हमें समझाया गया है किस तरीके से अपने लाइफ में जो एक सेट पैटर्न पे हम चल रहे होते हैं उससे हट के भी चीजें करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऑल्सो इसी पर्टिकुलर सीन में जग कायरा को सिखाता है कि भाई किस तरीके से उसको अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पे आके उसका कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना जरूरी है। एंड दिस गोज फॉर ऑल ऑफ अस आउट देयर, राइट? वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर ऐसी ही कोई कॉन्वर्सेशनल सीन आप एड इन करना चाहो देन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगी MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है ब्रो, नोट कर लो, एंड इट इज 9930983983। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन Qatar विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: दवे
3: दवे कौन?
2: The way you love me, I हाय मर जावा।
3: खटखट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi One. Mirchi, it's hot.

0: दिल।
1: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। YRF के Spy Universe की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म अल्फा को लेकर एक मेजर अपडेट मिला है। बेसिकली ये फिल्म जो पहले 10th ऑफ जुलाई को रिलीज होने वाली थी, वो अब 3rd जुलाई को ही आएगी। सो द थिंग इज कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म दी ओडिसी जो है वो 17th को रिलीज होने वाली है, अलॉन्ग विथ हिंदी फिल्म धमाल 4। तो अब ये फिल्म जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल्स में नजर आने वाली हैं, वो जब 3rd ऑफ जुलाई को ही आएगी इन द थिएटर्स, तो उसको बॉक्स ऑफिस पे पूरे के पूरे 2 हफ्ते मिल जाएंगे टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। वेल, अब डार्लिंग्स मूवी की डायरेक्टर को लेके एक नया अपडेट बताना चाहती हूँ। बेसिकली जसमीत के रीन इज द पर्सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आपको द रॉयल्स ये सीरीज तो याद होगी, जिसमें ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर लीड रोल में नजर आए थे। सो रिपोर्ट्स हैव इट दैट इस रोमांटिक कॉमेडी के सीजन 2 के डायरेक्शन की कमान इस बार जसमीत के रीन को मिला है। बाकी ये सीरीज फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन में है, जुलाई से इसके शूट की शुरुआत होने की संभावना है, और जैसे ही बाकी की डेट्स पता चलेंगी आपको जरूर बताऊंगी। भाई, फिल्म मेकर शेखर कपूर और म्यूजिक मास्ट्रो AR रहमान ने एक नया कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। सो मासूम द न्यू जनरेशन इज द फिल्म दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, जो शेखर कपूर की 1983 क्लासिक से इंस्पायर्ड होगी। ये फिल्म फैमिली, आइडेंटिटी, लव एंड माइग्रेशन को एक्सप्लोर करने वाली है इन अ कंटेम्पररी सेटअप, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, मनोज बाजपेयी, नित्या मेनन एंड कावेरी कपूर जैसे लोग नजर आने वाले हैं। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6, 89.6
2: मिर्ची

0: यार सच कह रही हूँ, अपनी फोन की बैटरी को ना इस वक्त तगड़ा कंपटीशन देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station and this is RJ Anshu with you. मैं तो बस उन्हीं फोन्स की बात कर रही थी जो अक्सर कंप्लेन दिया करते हैं कि हाय इनकी बैटरी जो है बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फोन में ये प्रॉब्लम है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आपकी जिंदगी में है, जरा 10 मिनट या 5 मिनट बाहर खड़े होकर देखो अपने फोन से पहले ड्रेन जो है ना आप दोगे। अरे नाना, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, सूरज चाचू को जाता है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: हाँ जी, आपका नाम भी जानते हैं, आपका काम तो बहुत अच्छी तरह से देख ही रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आज के टेम्परेचर को मैं देखने की कोशिश करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एसी के रिमोट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, सनस्क्रीन को भी। लेकिन हाँ, जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कुछ शामिल हो अंशु के अलावा तो वो है पानी। मैं पानी पानी पीती रहूं और आप भी पीते रहें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
4: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
5: मिर्ची, fresh माल.
6: Retro magic और dance floor energy के साथ सुनो चुनरी चुनरी, let's go.

इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Pepe Mirci.
1: İskabana, uskabana, sakabana. Ya bana. Burga, burga. La vida la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आगे वो भी आगे हैं, आगे वो भी आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू
2: कुकुड़
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: लिखी तो दिल है, कितनी बार जीतोगे?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मुझे भी ट्यून्ड हूँ आप, और ये स्टेटमेंट मैं देना चाहती हूँ आप कमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण के मेकर्स को, वो डायरेक्टर नितेश तिवारी हो या फिर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हो, क्योंकि एक तो ये पहली इंडियन फिल्म बनी है जो ऑन बोर्ड ले चुकी है 10,000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ग्लोबली, और उसमें ही नया अपडेट ये आया है कि रामायण के मेकर्स ने हॉलीवुड के रेनाउंड स्टंट कोरियोग्राफर्स को लूपिन किया है फॉर द सेम। तो आपको फिल्म्स मैड मैक्स फ्यूरी रोड या फिर द एवेंजर्स तो पता ही होगा। सो इन मूवीज के स्टंट कोरियोग्राफर्स दैट इज गाय नॉरिस और टेरी नोटरी अब रामायण फिल्म का भी हिस्सा है। माइंड यू, फिल्म में रणबीर कपूर बने हैं भगवान राम, साई पल्लवी इज प्लेइंग सीता माँ, रवि दुबे बने हैं लक्ष्मण, यश बने हैं रावण, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट सनी पाजी बने हैं हनुमान जी। एंड कसम से जब से मैंने इस मूवी का इतू सा वाला टीजर देखा है ना, तब से आई एम इन ऑफ इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसेज में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner, Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ। एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भाई सीरीज देखना भी एक कला है।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: तो आइए इन दो कैटेगरी के कलाकारों की बात कर लेते हैं, जिसमें पहली प्रजाति का सीरीज देखने वाला इंसान वो जो टकटकी लगा के एपिसोड दर एपिसोड एक सीरीज कंप्लीट करता है। मान लो थर्सडे या फ्राइडे को किसी सीरीज का एक नया एपिसोड आने वाला है, तो ये अलार्म लगाएगा, रिमाइंडर सेट करेगा, और जैसे ही वो एपिसोड आएगा वैसे ही उसको देख के अपने एंटरटेनमेंट की भूख मिटाएगा। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ सीरीज देखने वाले लोग हैं, ओ हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की चूल है इनके अंदर, क्योंकि ये बिंज वॉच में विश्वास करते हैं। इनको कोई सीरीज देखनी है तो शुरू से अंत तक एक बार में ही खत्म करनी है, इसीलिए ये या तो लिमिटेड सीरीज देखते हैं या फिर सारे एपिसोड्स एक बार में ही आने देंगे, और फाइनली जब सब कुछ एक साथ इनको मिल जाएगा तब ये बिंज वॉच करने पे आते हैं। और ये दूसरी कैटेगरी के बारे में मुझे इतने अच्छे से इसलिए बताया बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम दिस पर्सन। वैसे आप अपनी कैटेगरी बताने के लिए मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं विद द नेम MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: mirchi1qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन कतर विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: खट खट,
3: हू देयर?
2: हुमायूं?
3: हुमायूं हू?
4: अरे हुम आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
3: खट खट, हू देयर?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

किसी और को कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Radio Mirchi. वैसे तो it's hot, लेकिन आज के रेट को देखने की कोशिश करें तो मौसम के साथ साथ ये भी बड़ा ही हॉट है. एंड देखिए ना, इसके फ्लक्चुएट होने से हमारे इमोशंस जो है किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, खासकर जब पता हो कि अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं हैं, तो भी ये आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से पता है. लेकिन अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.05, पाकिस्तानी रुपीज 76.81, बांग्लादेशी टाका 33.68, नेपाली रुपीज 41.59 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 90.82. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the-

0: आज ना मेरे दिमाग में ये वाला गाना चल रहा है, सोने की साइकिल चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। मुझे नहीं पता आपको एक गाने के बारे में पता है कि नहीं पता है, लेकिन यार मैं बचपन से बड़ी फिल्मी रही हूँ और मैंने सारे फिल्मी गाने जो हैं वो रटे हुए भी हैं और देखे हुए भी हैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And now you tune in with me on Mirchi. And actually, ये गाना सुबह तब से शुरू हुआ जब से मुझे पता लगा कि आज World Bicycle Day है. और आज हम जब उस एरा में रहते हैं जहां हर दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये दिन तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी। और देखो बॉस, साइकिल चलाना आ जाना वाज एक्साइटिंग, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग वाज साइकिल चलाना सीखना। वो कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत सफर होता है, तो बात यहाँ भी कुछ ऐसी ही है। और साइकिल चलाना सीख लेने के बाद की यादें हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन मार्क नहीं है कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ। लेकिन जिस दिन साइकिल चलाना सीखा ना, वो दिन हम सभी को अपनी अपनी जिंदगियों में याद है ना। आई थिंक मेरी लाइफ की शायद वो पहली फीलिंग थी जब मुझे लगा था कि मैं खुद से भी कुछ कर सकती हूँ। वाओ, आज से पहले मैंने कभी इस दिन की खासियत को इतनी गहराई से समझा ही नहीं था यार। आपके साथ बातें करते करते ना बाकी कितनी सारी बातें निकल जाती है। तो चलो किस्सों की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं और मिडडे मोहब्बत पर 90s का गियर लगाते हैं। एंड द सॉन्ग कमिंग अप इज डेडिकेटेड टू माय पहली साइकिल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana, rabana, burga, burga,
1: na vid bala burga. Milci, burga. हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: गर्लफ्रेंड
3: से ज्यादा करते हैं। सर, किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
8: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Pehli Cycle.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज तुम्हारा जिक्र छिड़ा तो याद आया कि तुम्हें हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले थे यार। तुम शायद मेरा पहला बड़ा ख्वाब थी और तुम्हें पाने की आस जब थी ना तो लगता था कि बस तुम मिल जाओ तो लाइफ बन जाए। क्या पता था कि इस फीलिंग का ये सिलसिला आज तक चलता ही जाएगा। नेवरदलेस तुम्हें पाने की एक ही शर्त थी जो हर बच्चे के माँ बाप रखते हैं शायद, कि एग्जाम्स में ढंग के नंबरों से पास हो जाओ तो मिलेगी साइकिल। और बस यही मेरा उस साल का मकसद था। मुझे क्लियरली याद नहीं कि मेरे मार्क्स कैसे आए थे, कितने आए थे, लेकिन ये जरूर याद है कि तुम जरूर घर आई थी। सिल्वर और ब्लू कलर की बॉडी विद अ बैक रेस्ट, मुझे तुम्हारा लुक आज तक याद है। और वो पहली बार जब मैं तुम्हें स्टेशन रोड पर बनी साइकिल्स की शॉप से घर तक चलाकर लाई थी ना, वो मेरी लाइफ की पहली लॉन्ग ड्राइव थी। ऑफ कोर्स तुम्हारे घर आने के बाद मैं तुम्हें पूरे दिन तो नहीं चलाती थी, लेकिन तुम्हारी मेरे लाइफ में

की खुशी मेरे दिल को दिन भर गार्डन गार्डन रखती थी। तुम्हें पता है, जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी ना, तब भी मैं इतनी खुश नहीं थी जितना कि तुम्हें लाने वाले दिन खुश थी। शायद EMI और पेट्रोल का खर्च सताने के लिए नहीं था ना, इसीलिए। तुम्हारे बारे में जितना बोलूं ना कम ही है यार। तुम मेरे बचपन का एक बहुत अहम हिस्सा थी, मेरी इंडिपेंडेंस की फीलिंग, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहला लेसन तुम थी, मेरी पहली साइकिल, पेडलिंग थ्रू योर मेमोरीज, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: पिता हम हैं।
1: 90s में साइकिल्स और बॉलीवुड फिल्मों का ना बड़ा गहरा रिश्ता था।
2: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
3: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है एंड दिस मेक्स मी रियलाइज कि 90s के बॉलीवुड का, इनफैक्ट उससे पहले के बॉलीवुड का भी और साइकिल का नाता ना बड़ा गहरा रहा है। जाने कितनी बॉलीवुड फिल्म्स हैं या गाने हैं जहां साइकिल्स हैव बीन यूज्ड एज अ प्रॉप। जो जीता वही सिकंदर में तो साइकिलिंग प्लेज अ ह्यूज रोल। रिमेम्बर हाउ आमिर खान के फादर उनके बड़े भाई को एक हाई एंड साइकिल दिलाने के लिए कैसे पैसे जमा कर रहे थे और उसी साइकिल पर रेस करके इन द एंड आमिर बिकम्स द सिकंदर। इनफैक्ट दिस वॉज द मूवी जिसमें हमें ये पता लगा था कि अच्छा, साइकिल्स में भी गियर होते हैं। तब से आई वॉन्टेड टू राइड अ गियर वाली साइकिल, जो ख्वाब मेरा कोविड के टाइम पर पूरा हुआ। सोचो फिल्में हमारी लाइफ का कितना अहम हिस्सा है ना, इनमें से न जाने कितने सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं फॉर आवर बकेट लिस्ट, है कि नहीं। चलो जी, इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन Qatar विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: खट खट, अकबर। अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
3: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her shine.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And cycle को Bollywood के certain eras में as a prop कितना use किया गया है, ये हम millennials से पूछो. So much so that कि आज भी अगर हम किसी scenic जगह पर cycle चला रहे हो ना, तो we feel like we are a part of a movie. और camera हमारे ऊपर ही focused है. यही तो कमाल रहा है Bollywood का हम पर. And I still remember एक नई तरीके की cycle जो हमारी life में तब introduce हुई थी, जब दिल तो पागल है के title track में we saw माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार riding the same bicycle, which was a double seat cycle. Not just this song, अकेले हम अकेले तुम का वो गाना राजा को रानी से. Well, आमिर और मनीषा बीच पर साइकिल चलाते हुए गाना गाते हुए नजर आते हैं इस गाने में. तो ऑल इन ऑल बात सिंपल है. Thanks to Bollywood, cycle for us millennials is equal to romance. We either romanticize riding a bicycle or we want to go on a romantic cycle date. Heck kiri! Isi baat par ho jaye the next track. You stay tuned with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: मोबाइल पे
1: और क्या,
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: फिर पता है लाइफ में किक कैसे मिलता है? लाइफ में किक तब मिलता है जब आपको लाइफ में चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, तब आपका एड्रेनलिन रश अपने आप बढ़ जाता है एंड यू फील लाइक ओके नाउ गियर अप फॉर दिस सिचुएशन। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक चैलेंज दिया जाए।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और इसी चैलेंज को आज से हम कहेंगे मान ना मान करो गानों की पहचान। तो मैं आपको दो धुनें सुनाऊंगी, ये धुनें आपस में मिक्स हुई भी होंगी लेकिन आपको पहचानना है कि ये दो अलग अलग गाने कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये धुनें बजाती हूँ जो कि मिक्स है। वापस से बता दूं इसके अंदर दो गाने हैं और दोनों गाने आपको पहचानने हैं। आज के लिए धुन है

अगर आपके दिमाग में ये धुन का गाना पकड़ में आ गया है तो फिर फौरन डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, एक मैसेज और साथ ही साथ इस चैलेंज का जवाब आप मुझे वॉइस नोट के जरिए डीएम करके भेजो। मैं वेट कर रही हूँ आप कहाँ। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मनीषा कोइराला एंड अक्षय खन्ना की एक मूवी थी लावारिस। उसका एक गाना है जिसका वारिस कोई और है लेकिन नाम लावारिस का लगा हुआ है।
2: Mirchi, Thugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अगर नहीं समझे तो समझाती हूँ। Well, लावारिस का ये गाना। जिसका म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया है। वेल, ये गाने की धुन इज कॉपीड फ्रॉम द सॉन्ग जो अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी सुनाई देती हूँ यार। Come on Barbie, let's go party. अगर आपके पास भी 90s या अर्ली 2000s की किसी भी फिल्म या गाने की इन्फो है जो कि कहीं से कॉपी किया गया है तो DM करो on my Instagram handle which is Mirchi Sara. इसी के साथ coming up the next track, you stay tuned with me Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन कतर.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन कतर विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: खट खट,
3: कौन है?
2: ईशांत।
3: ईशांत कौन?
2: ईशांत गदाधारी भीम, ईशांत।
4: खट खट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. Na vidbala, burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
3: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
3: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
3: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
3: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
3: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले।
3: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने आज वर्ल्ड साइकिल डे पर साइकिल से रिलेटेड कई सारी बातें करी हैं और अब मैं आपको उस एक्टर के बारे में बताती हूँ जो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन के लिए कार में नहीं साइकिल पर पहुंचे थे।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ तो नहीं, क्योंकि सलमान खान तो शौकिया तौर पर साइकिल चलाते हैं, लेकिन जिन एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो मजबूरी में साइकिल चलाकर अवार्ड रिसीव करने के लिए गए थे, और ये है आशुतोष राणा, जिन्हें अपना पहला फिल्म फेयर मिलने वाला था फॉर द मूवी दुश्मन, लेकिन वो तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया करते थे। एंड फॉर द अवार्ड फंक्शन ही चोज टू राइड अ बाइसिकल। एंड इन एन इंटरव्यू ही रिवील्ड कि एट दैट टाइम ही एंड हिज नाउ वाइफ रेणुका शाहने वर डेटिंग ईच अदर, और रेणुका ने उन्हें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करके सरप्राइज दिया था। एंड आफ्टर दैट आशुतोष ने रेणुका को एक कार गिफ्ट करी। इसे कहते हैं कपल गोल्स। तो चलो इसी बात पर आशुतोष की फिल्म संघर्ष से हो जाए अगला गाना। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Cassette ke side B ka teesra gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: कोयला मूवी में जो म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इस म्यूजिक में ना एक कसक है जो लिटरली दिल के तार छू जाती है, एंड आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि जितना मैं कोयला के म्यूजिक को फील करती हूँ ना, उतने मेरे पास शायद अल्फाज नहीं होंगे टू एक्सप्लेन इट। बट दिस सॉन्ग

वैसे तो इस गाने की सिचुएशन इन द फिल्म इज डिफरेंट, लेकिन आज की अगर बात करें ना तो आई फील कि दिस सॉन्ग इज फॉर दोज टू पीपल जो एक बड़े से शहर में जाकर अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग अक्सर इतनी भीड़ में खुद को तन्हा ही पाते हैं, और जब दो तन्हा दिल मिलते हैं तो वो दोनों के अकेलेपन को समझते हैं और वहीं कनेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि यही है वो तन्हाई जो दोनों को पास ले आई। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरा ख्याल करना है तो शो के बाद इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: है।
1: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
2: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
1: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
2: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
1: मिर्ची वन Qatar विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
3: खट खट,
4: हू देयर?
3: बनता
4: बनता हूँ।
3: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
4: खट खट, हू देयर?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए 4।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल, शाम शानदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिर्ची ईशा आ चुकी है आपके साथ, आपको एंटरटेनमेंट का डोज देने शुरुआत हो चुकी है हमारे शो की, जहाँ पे हम बातें करेंगे ढेरों सारे। रिसेंटली ना मैंने एक बुक रीड करना शुरू की है जिसका नाम है इकिगाई, और वो एक जापनी सीक्रेट है टू अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। एंड लिटरली स्पीकिंग कि मुझे उसमें जो भी बातें हैं वो ऑलरेडी पता थी कि किस तरीके से वी हैव टू लिव आवर लाइफ हेल्दी लाइफ, लेकिन उस बुक के आने के बाद, पढ़ने के बाद, आई डोंट नो हाउ मैजिकल इज दिस बुक इज। मैंने उन चीज़ों को बहुत सीरियसली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया है और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। एंड आई गिव ऑल क्रेडिट टू दिस बुक, क्योंकि ये मेरे हाथ में है और मुझे ये इन्फ्लुएंस कर रही है, इनकरेज कर रही है एक हेल्दी लाइफ के लिए। बाकी बातों का सिलसिला जारी रहेगा मेरे साथ, यानी कि मेरे शीशा के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Gaga.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Murga, murga. Navid bala murga. Mirchi, murga. Gaga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो मैं लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ले रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ। वो भी
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: फ्री फ्री फ्री, अरे ये सुनते ही ना वैसे ही कान ऐसे खड़े हो जाते ना भाई, फ्री में क्या है फ्री में। बोले तो आपके लिए लाई हूँ एक अमेजिंग सा इवेंट। जी हाँ, मिर्ची ईशा आपके लिए इवेंट्स मजेदार ना लाए तो कौन लाएगा। तो आपको बता दूं, एक ऐसा ही इवेंट जो बिल्कुल फ्री है, यानी कि मिरयाल वाटर पार्क बीच, जो 1 जून से लेकर जून 30 तक टोटली फ्री है। एंड ये फ्री पब्लिक एक्सेस 6 PM to 11 PM है, टोटली फ्री है। हाँ, और यहाँ पे आपको मिलेगा भंडार परफॉर्मेंसेस का, चाहे वो स्पॉन्ज बॉब हो चाहे पॉ पेट्रोल हो, ये सारे क्रू आपको वहां मिलेंगे मिरयाल वाटर पार्क बीच में। अनलिमिटेड फन, अनलिमिटेड समर स्प्लैश, अरे ऑल जून आपका जो है ना, दैट विल बी एन अमेजिंग एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज आउट ऑफ इट, आई एम डैम श्योर। यहाँ पे हो रहे हैं बहुत सारे स्टेज शोज, मीटिंग चेज, स्काई, स्पॉन्ज बॉब एंड पेट्रिक IRL, बहुत कुछ और भी। तो बस 6 बजे के बाद अपना टाइम फ्री रखिए और जाइए मिरयाल पार्क और एंजॉय करिए मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स ऑन।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसेज में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी। हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन June 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
10: Here we go again. Authentic, original and better than our rivals.

0: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
1: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
2: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
0: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
2: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
0: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: मिर्ची वन Qatar विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार जब बोलबाला किसी सिंगर का या किसी एक्टर का चल पड़े तो बस उसी का ही चलता है काफी देर तक। ऐसे सिंगर की बात करने जा रही हूँ आज मैं जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस समय एकदम हाई है। जी हाँ, हाई तो है और ज्यादा छाई हुई है। हर गाने की बात कर लो, चाहे मूवी में स्लो सॉन्ग की बात करो या हिप हॉप की बात करो या सॉन्ग राइटिंग की बात करो, रैपिंग की बात करो, ये लेडी हर जगह है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जैस्मिन सैंडलर्स की, जो एक इंडियन अमेरिकन सिंगर है जो लिखती भी है, रैप भी करती है एंड परफॉर्म भी करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी जो जर्नी है जब स्टार्ट करी थी तो हमने इनको हमेशा पंजाबी एल्बम्स में देखा था विद द रेड हेयर्स। हम इनको रेड हेयर्स गर्ल बोलते थे, लेकिन इनको एक गुलाबी क्वीन भी कहा जाता है। यस, इसीलिए क्योंकि इनके एकदम रेड हेयर्स थे एंड हम उनको दूर से पहचान लेते, शी इज जैस्मिन सैंडलर्स। एंड यस, बात करें बॉलीवुड की तो आपने गाना शरारत सुना होगा, वो इन्होंने खुद लिखा है और गाया भी है। बड़ी मजेदार बात है कि इन्होंने बहुत चंद घंटों में ही इस गाने को प्रिपेयर किया था और गाया था। इंडस्ट्री में एक छाप छोड़ना और बहुत देर तक पॉपुलर रहना आपको कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जाता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी इनको हुआ था। एंड यू नो, आई थिंक बॉलीवुड में थोड़ा प्रेशर हो जाता है टू रिमेन इन द बॉलीवुड, टू रिमेन इन दिस शोबिज। बाकी आपकी किस्मत भी है और आपका लक भी है। बाकी साथ देता है तो आप बढ़ते हैं आगे, नहीं साथ देता है देन यू लीव। इन ये बात मैं जरूर कहूंगी, जैस्मिन सैंडलर्स को देख के ना मन खुश हो ही जाता है, चाहे वो परफॉर्म कर रही हो चाहे वो गाना गा रही हो, दिल से गाना गा दे यार, उनकी आवाज बिल्कुल अलग है। बाकी आप एंजॉय करिए ये गाना जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज में, शरारत। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Alfahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Alfahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों और बहुत मज़ेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं ऐसी ही जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है, एंड इट इज़ 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिज़ाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज़ संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM टू 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज्ड। सो थर्सडे 9 AM टू 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM टू 7 PM। तो जाना कहाँ है? 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड में आपका मजेदार हो जाएगा। अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1st September 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
5: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे, बता रहा हूँ आपको।
5: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
8: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट,
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
6: FM, मिर्ची वन, It's hot.

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रखता है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है किस तरीके से, नए तरीके से हम अपने अपने आर्ट को बहुत खूबसूरती से बयां कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। वैसे ही अगर आप एक मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं रौदत अल हमामा पार्क, जहाँ पे गार्डन ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, विच इज डन बाय पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये अशकल ने, एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड खरामा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 540 स्क्वायर मीटर की दीवार पे बहुत खूबसूरत तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी को लिखा गया है। इसमें दिखता है किस तरीके से लेटर्स को कलरफुल फॉर्म में लिखा गया है, एंड नेचर के साथ वो खूबसूरत से लेटर्स कुछ तो बयां कर रहे हैं। एंड एन आर्टिस्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द अदर आर्टिस्ट। तो भाई आर्टिस्ट लोग, अगर आपको पसंद है ऐसी चीजें तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मुरल आर्ट आज ही एट रौदत अल हमामा पार्क। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: Restaurant partner Chaska Restaurant. Chinese, Mumbai ho ya North Indian ka craze. Budget mein chahiye tasty dish? To chaliye Chaska Restaurant. Jo hai Hasdan Oasis mein. Swaad bhi zabardast aur price bhi mast.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइन, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन June 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हमारी ऑफिस से छुट्टी हो ना हो, लेकिन सूरज जी जो हैं वो कभी छुट्टी नहीं लेते, बस आ जाते हैं। चेक करते हैं आज का वेदर रिपोर्ट।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेदर की बात करें, वेल 45 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, फुली सनी एंड इट विल फील लाइक 46 डिग्री। भाई झुलसने वाली गर्मी आ चुकी है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला का यूज़ करें, पानी का यूज़ करें और सनस्क्रीन का यूज़ करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन Qatar विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: कौन है?
3: स्टेन।
2: स्टेन कौन?
3: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
4: खट खट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Mirchi ghadi mein is waqt baj rahe hain 6. Sunte rahiye 89.6. Mirchi 1, it's hot.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: मिर्ची फ्रेश माल
1: रेट्रो मैजिक और डांस फ्लोर एनर्जी के साथ सुनो चुनरी चुनरी लेट्स गो।

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: किसी और को कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Radio Mirchi. वैसे तो it's hot, लेकिन आज के रेट को देखने की कोशिश करें तो मौसम के साथ साथ ये भी बड़ा ही हॉट है। एंड देखें ना, इसके फ्लक्चुएट होने से हमारे इमोशंस जो है किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, खासकर जब पता हो कि अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं हैं, तो भी ये आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.05, पाकिस्तानी रुपीज 76.81, बांग्लादेशी टाका 33.68, नेपाली रुपीज 41.59 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 90.82। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virba la murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो,
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे
2: हैं? मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: हैं, मोबाइल पे?
1: और क्या,
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट। Sheesh.

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अगर आप भी मेरी तरह लेजी है ना, तो ये एक सिंपल सा जो एक मंत्र है ना, वो लेके आई हूँ आपके लिए। जी हाँ, मंत्रा कुछ इस प्रकार है, करना कुछ नहीं है, फीलिंग लेजी और एक घंटे बाद आपकी मीटिंग है, आपको अपने टीथ को ब्रश करना है। एंड ब्रश करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप राइट हैंडर हैं ब्रश करने के लिए, तो आपको लेफ्ट से करना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपको राइट से करना है। तो उसमें क्या होगा, यू विल कन्फ्यूज योर ब्रेन। जी हाँ, आप अपने ब्रेन को मजबूर कर देंगे सोचने के लिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द थिंग विच आई डू यूजुअली, अनयूजुअल चीज़ हो रही है मेरी बॉडी में। एंड ब्रेन अपने आप जाग जाएगा और आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर ऑल सेट रेडी फॉर योर मीटिंग एंड दैट्स द फनीएस्ट एंड अ वेरी ट्रू फैक्ट जो आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा अगर आप करोगे तो। मुझे मिर्ची वन कतर पे डीएम करके बताइएगा एंड मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। बाकी बस ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए ना सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ. एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
5: अर्ज किया है
6: इरशाद. इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन Qatar विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

अगर आप भी हैं फुटबॉल लवर तो आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आई हूँ। वेलकम टू माई शो शाम शानदार, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फुटबॉल लवर्स की, जो मैच अगर देखना पसंद करते हैं और कतर टीम को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। कतर वर्सेस सल्वाडोर होने वाला है 6 जून को बीएमओ स्टेडियम लॉस एंजल्स में, एंड कतर की टाइमिंग के अकॉर्डिंग 11 PM ये शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अलकास स्पोर्ट्स चैनल्स में। एंड ऑफकोर्स अगर आप कतर की टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं तो ये मैच देखना तो बनता है, तो देखिए और एंजॉय ये मेरे साथ शाम शानदार, only on 89.6 मिर्ची 1 and 100।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi ghadi mein is waqt baj rahe hain 7. Sunte rahiye 89.6. Mirchi Van, it's hot.
0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: मेहरबान कदरदान, मैं आ गई हूँ मेरी चीशा आपके साथ एक नया फैक्ट शेयर करने। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है, सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहां पे डबल लेटर्स तीन बार यूज किए जा रहे हैं। मींस डबल लेटर का सेट है, तीन सेट हैं डबल लेटर्स के, और वो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसका नाम है, आपने सही सोचा, बुक कीपर। जी हाँ, बुक कीपर में डबल ओ भी आता है, डबल के भी आता है, डबल ई भी आता है। That's a strange one. और आप हैरान होंगे कि पूरी इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड है जो ऐसा है। बाकी ऐसे फैक्ट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मेरी शीशा को उलियान 89.6 मिर्ची वन एट साथ।
1: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: Fermici.
1: Iscaba la puscaba na sacaba na. Rabala. Burga, burga. La vieva la burga.
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानूं, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करने मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
3: पकड़ ले।
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: हाउस द जोश,
6: हाय सर,
5: हाउस द जोश,
6: हाय सर।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: बैक टू बैक
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अगर आपको भी ऐसी नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है, नए पार्क्स को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वेलकम, आप सही जगह आए हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची ईशा को और शाम शानदार में आपकी शाम को और शानदार करने आ चुकी हूँ मैं, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसी हिडन प्लेस जो अभी हाल ही में खुली है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्क जो अल थुमामा में खुला है एंड इट इज अल नाफल पार्क, जहाँ पे आप जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, फैमिली के साथ, बच्चों के स्कूटर्स उठा के, साइकिल्स उठा के आप निकल जाइए अल थुमामा में, अल नाफल पार्क में जो नया ही नया खुला है एंड इट इज फैमिली फ्रेंडली पार्क, जहाँ पे आपको मिलेगा आउटडोर एरियाज जहाँ पे फिटनेस भी है एंड वॉकिंग एरियाज भी बहुत अच्छे हैं, जॉगिंग एरियाज है एंड उसके अलावा आपको शेडेड ग्रीन स्पेसेस भी मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। उसके अलावा किड्स प्ले एरिया तो ऑब्वियसली हर पार्क में है कतर में, तो बस यहाँ पे भी तो हो। और आपने क्या करना है, बस अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उठा के जाना है, एंजॉय करना है, बाकी बस अपने आस पास को साफ भी रखना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनको भी सिखाइए भी साफ रखना है, पार्क को गंद नहीं मचाना है। बाकी फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसेस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी। हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Dosti kai ko sulay madam. No sorry, no thank you.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

ये जो समय है ना, ये बहुत ही चंचल है। What do you say? देखिए, मैं समय रहना की बात नहीं कर रही, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। जी हाँ, टाइम अब आगे बढ़ रहा है, तो बता दूँ मेरा समय भी हो चुका है जाने का, आप लोगों से अलविदा कहने का। तो भाई अब और क्या कहें आपके साथ, ये जो घंटे थे ना, ये कैसे भी थे पता ही नहीं चला। एंड आई होप कि आपकी जो आने वाले दिनों में छुट्टियां हैं वो बहुत खूबसूरत बीते। स्टेकेशन पे जाइए, एंजॉय करिए, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और एंजॉय करिए ईद के फेस्टिवल को। कल भी आऊंगी मैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, कल भी हम सिर्फ करेंगे बहुत सारी बातें, ईद की खास बातें, बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना उसके लिए। तो चलिए, लेती हूँ अलविदा आपसे आज के लिए, कल मिलती हूँ आपको इसी समय। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन कतर डॉट कॉम पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
0: मिर्ची वन कतर विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
2: अबे कौन है?
3: उत्तपा।
2: उत्तपा कौन?
3: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
2: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
3: इंडी टॉप 10
4: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
5: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane, usme ek nayi entry hai, hamara 90s 2000s ka indie pop classic, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10, Mika Singh the other rapper ka gaana, gaane ka naam hai Chori. Pichle hafte se apni position par barkarar, Chori is this week on Gaana number 10. Uske baad Mitta Roar ka Shisha, Mitta Roar ki composition, unhi ke lyrics, pichle से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
3: नंबर 10।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से री रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो।

0: आई नो यू नो द राइट आंसर, साइड वाले को भी बताओ एट आरजे करेगा, बट जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंट डाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiz wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो मैं लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब, मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक दिन परेशान हूँ मैं, जो हर साल का रिटर्न सब फाइल कर देता हूँ। वो अभी
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: ये पगला।
6: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
9: Ghana
0: Indie
9: Top 10.
0: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
10: Number 7.

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए. मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक, वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
6: इंडी टॉप 10
7: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
8: नंबर 4।

जय कने का आगे फॉलो करो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna ni begane baro Krishna ni begane.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hari Haran ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound आज भी रेवोल्यूशनरी है। 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा। इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट, बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है। मैं तब छोटी थी। गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस। और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक as Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Colonial Cousins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय, माय साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी है. It's an Anoop Jain song, उन्हीं की composition, a Coke Studio Bharat song. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके this week on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बद्दी का नाम है कनिका. Enjoy. Number 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
2: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
1: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
2: मिर्ची वन कतर डॉट कॉम पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
1: मिर्ची वन कतर विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
3: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
4: खटखट हू दैट
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
6: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9।
7: तेरे आगे पीछे लंके सुन दोना छोरी का हर।
6: गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7।
8: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
6: दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
9: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना।
6: उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
10: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में।
6: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन, 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot.
1: Hello Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
2: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना.
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस.

0: क्या ही हद सेंशियस गाना है ये भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे याद है गाना मैंने शायद टीवी पे ये फिल्म आ रही थी तब देखा सुना था, या चित्रहार में देखा सुना था। और ये जो अगला गाना हम सुन रहे हैं ना, ये भी कोई कम सेंशियस नहीं है, लेकिन ये मैंने पता है कब पहली बार सुना था, इसे मैंने एज ए रीमिक्स सुना था। इस रीमिक्स के वीडियो में थी आयशा टाकिया, शायद आपको याद आ जाए वो वीडियो जिसमें उन्होंने दो चोटियां बनाई हुई होती हैं और उस गाने में क्लब दिखाते हैं, लिफ्ट भी दिखाते हैं। अब तो याद आ ही गया। ओरिजिनली ये गाना है जवानी दीवानी का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: ए, आओ ना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: गर्लफ्रेंड
3: से ज्यादा करते हैं। सर, किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़नेगी? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा आपसे, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on.

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

1985 की फिल्म गुलामी जब बन रही थी तो उसके प्रोड्यूसर को कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली काफी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तब फिल्म के स्टार्स में से जो सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी फीस नहीं लूंगा इस फिल्म के लिए, वो थे बड़े दिल वाले काइंड हार्टेड धर्मेंद्र जी। और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को जब पता चला कि धर्मेंद्र जी ऐसा जेस्चर कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी फीस लेने से मना कर दिया। तो इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हेमा मालिनी की उनकी खुद की फेवरेट फिल्म्स कौन सी रही हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: वैसे दुल्हन, किनारा, खुशबू, देन सीता गीता, इट्स अ डिफरेंट रोल, लाल पत्थर।
0: वैसे हेमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एक्सपोज करने वाली फिल्में या सेंसुअस रोल्स वो नहीं करती थी, जिसकी वजह उनको ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता था, और उनकी मम्मा भी ये सब अलाउ नहीं करती थी जो उनके करियर के काफी डिसीजंस लेती थी। वैसे हेमा जी से एक बार ये भी पूछा गया था कि उनकी मम्मा जब हमेशा उनके साथ फिल्मों के सेट्स पर रहती थी तो उनके सामने क्या रोमांटिक सीन्स करने में वो अनकंफर्टेबल होती थी।
1: हमारे परिवार के कोई भी सदस्य इस किस्म के सीन करने के समय सामने बैठे हों कैमरा के सामने, तो आर्टिस्ट को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये माँ हो या भाई हो या कोई भी हमारे घर के सदस्य, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन टू डू योर रोमांटिक सीन विद अ मैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स।
0: चलिए इसी बात पे गाना सुनते हैं, जिसका पिक्चराइजेशन शायद इतना सेंसुअस नहीं था, लेकिन ये गाना एक अलग ही तरह का सेंसुअस और रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
2: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
1: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
2: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
1: मिर्ची वन Qatar विशेष हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
3: कट कट,
4: हु दैट?
3: जस्सी।
4: जस्सी, कौन सी वाली जस्सी?
3: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
4: कट कट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1983 की फिल्म सदमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसका जो क्लासिक गाना है ए जिंदगी गले लगा ले, ये गाना सुरेश वाडकर जी की आवाज में है, गुलजार साहब ने लिखा है, इले राजा का कंपोज किया हुआ। और इले राजा जी जब इसे कंपोज कर रहे थे इस फिल्म में, तो उनके म्यूजिक ग्रुप में कीबोर्ड प्लेयर पता है कौन थे? A.R. रहमान। किसने सोचा था कि उस फिल्म के कंपोजर्स के ग्रुप में जो कीबोर्ड प्लेयर लड़का है वो और इस फिल्म के लिरिसिस्ट गुलजार साहब मिलके कुछ 25 साल बाद एक आइकॉनिक सॉन्ग बनाएंगे जिसे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। स्लमडॉग मिलियनेयर का जय हो भाई, ऐसी है जिंदगी, कभी लात मार देती है कभी गले लगा लेती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

नसीब फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अपेरेंटली अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की साथ में लास्ट फिल्म थी। ऐसा सुनने में आता था कि अमिताभ बच्चन साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सेट्स पे देर से आने की आदत से परेशान थे, और यहाँ अपने बच्चन साहब तो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो उनसे नहीं हो पा रहा था बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत लेट आते थे सेट्स पे, तो उन्होंने उनके साथ काम करना फिर बंद कर दिया। एक्चुअली आई थिंक ये 1981 की फिल्म है नसीब, उसके बाद इनकी कोई फिल्म आई भी नहीं साथ में, कोई पहले से बन रही हो लेट रिलीज हुई हो वो अलग बात है आई थिंक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Purani Jeans. Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. Navidwala, burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: मोबाइल पे
2: और क्या,
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: 89.6 89.6 FM
13: मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: भाई लता मंगेशकर जी ने जब मैंने प्यार किया फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए थे तो कैसे किए थे?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप कहेंगे स्टूडियो में गा के माइक के सामने किए होंगे। ऑफ कोर्स वैसे किए थे, लेकिन उन्होंने ना उस फिल्म के सारे गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि फिर उनको अब्रॉड टूर पे जाना था, कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह पे। और आप सोचिए, ये फिल्म आई थी 1989 में, और उस टाइम लता मंगेशकर जी 60 साल की थी। क्या उनका स्टेमिना, उनकी एनर्जी रही होगी। और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल भी किया अगले दिन ये सारी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद। ऐसे ही होते हैं फिर कर्मठ लोग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जम विच फट्टे चकांगे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.

0: तुम्हारा नहीं।
1: देव आनंद साहब का असली नाम क्या था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और एक बार एक इंटरव्यू में इस पर खुद उन्होंने क्लैरिटी दी थी, सुनिए।
2: नाम है धर्मदेव, मैंने धर्म को उड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्म बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। Yes. देव रखा और देव के साथ आनंद जोड़ दिया, इसलिए आनंद मेरा सरनेम है, और इसलिए मैं धर्मदेव आनंद से देव आनंद।
1: और अर्ली 40s जब वो लाहौर में ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे आ गए थे एक्टर बनने के लिए, उन दिनों को याद करते हुए सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
3: मैं लाहौर गम कॉलेज में था, मैंने बीए ऑनर्स किए थे और मैं एमए जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी और मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मैं 2 साल का स्ट्रगल किया और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला, हम एक है में, तो हम एक है वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आजादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं।
1: कई बार मुझे लगता है कुछ पुराने एक्टर्स में एक अलग तरह की संवेदनशीलता इसीलिए होती थी बिकॉज इन्होंने इतने बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
2: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
1: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
2: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
1: मिर्ची वन Qatar विशेस हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

प्रोफेसर फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में शमी कपूर के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस कल्पना। इनका पूरा नाम कल्पना मोहन था, एक्चुअली इनका रियल नेम अर्चना मोहन था और ये फ्रीडम फाइटर अवनी मोहन की डॉटर थी। अवनी मोहन एक पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड थे और कल्पना जी बहुत अच्छी कथक डांसर भी थी। और कई बार ऐसा होता था कि राष्ट्रपति भवन में जब बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था बाहर के देशों से भी, तो जब कोई ऐसा कथक परफॉर्मेंस होता था तो उनको इनवाइट भी किया जाता था। काफी फिल्मों में थी ये, प्यार किए जा फिल्म में थी एंड तीन देवियां फिल्म में वो जो गाना है अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं वो कल्पना जी ही तो हैं देवानंद साहब के साथ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1968 की फिल्म शिकार का सुपरहिट गाना पर्दे में रहने दो। इनफैक्ट इस फिल्म के और कोई गाने याद भी नहीं है, यही गाना इकलौता है जो याद रहता है, जो सुपरहिट हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना जब फिल्म के ट्रायल शो में आशा पारेख जी ने देखा ना, तो उन्होंने ऐसी डिमांड की कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। ऐसा सुनने में आता है कि काफी लोगों ने उनके ऐसे कान भर दिए थे कि ये गाना अश्लील है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको भी ये गाना अश्लील लगा था। बताइए कितने सीधे लोग थे उस टाइम के, ऐसे ऐसे गाने उनको अश्लील लगते थे, आज तो उनको क्या ही लगता होगा। खैर, काफी बातचीत, डिस्कशन, आर्गुमेंट के बाद फाइनली ये गाना फिल्म में रखा गया, जिससे आशा पारेख जी थोड़ी तब नाराज भी हो गई थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, गाना सुपर हिट हो गया, इस गाने के लिए आशा भोसले जी को उस साल बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, तब सारी नाराजगी दूर हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
4: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है,
3: साहब जी को गलत बात है, साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
4: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
4: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
6: 89.6
5: मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: दो।
1: प्रेम चोपड़ा साहब हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए और जब वो कॉलेज पहुंचे तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या मिली? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस करनी पड़ी वो थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे तो फटर फटर अंग्रेजी बोले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सुनिए इस सब से प्रेम चोपड़ा साहब को क्या रियलाइज हुआ, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
2: तुमको देख के मैं बड़ा ताजुब करता था, यार कितने कॉन्फिडेंस है इनमें और हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो मैं चाहता था उनकी तरह बनूं। तो फिर मैंने

0: मुझे दिया गया जो सेंट्रल रोल था वो बड़ा लोगों को पसंद आया, तो मैंने आके अपने वालिद को, वालिद साहब को कहा कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ ट्राई। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बड़ी इनसिक्योर प्रोफेशन है, तुम भी अब जैसे IAS वगैरह कुछ करो या कुछ अकाउंट्स ऑफिसर बन जाओ, उसमें यही करना चाहिए रेगुलर ऑफिसर। तो मैंने कहा कोशिश तो मैंने ज़रूर करूँगा। अरे कहते हैं भाई ये बड़ा गड़बड़ है प्रोफेशन, क्या करोगे तुम, तो और मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूंगा वहाँ, ये सोच सोचना, आई हैव लार्ज फैमिली एंड आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैंने कहा नहीं मैं जाके कोशिश करता हूँ, एक दो महीने का खर्चा लेके मैं चला गया।
1: चले तो गए लेकिन बॉम्बे पहुँच के उनका सफर इतना आसान नहीं था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: कई लोगों के आइडल गुलजार साहब के आइडल रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन टैगोर जी का लिटरेचर गुलजार साहब की लाइफ में कैसे आया, लेकिन उससे पहले किस तरह की किताबें वो पढ़ते थे, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में गुलजार साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टू स्टार्ट विद बड़ी जासूसी नॉवल पढ़ा, थ्रिलर्स, तलिस्मी, छुराव, बहराम, डाकू। वो एक लाइब्रेरी थी छोटी सी, पार्टीशन हुआ था, खोखे बना लिए थे रिफ्यूजीज ने ले आके। अखबार भी बेचते थे, किताबें भी देते थे, किराए पर भी देते थे, और हफ्ते में चार आना और किताबें जितनी चाहो पढ़ लो। यही उनका अंदाजा था, भाई एक किताब पढ़ लेगा, दो पढ़ लेगा, और क्या। और मैं अब जासूसी नॉवेल का तो ये चस्का होता कि जब तक क्लाइमेक्स ना मालूम आप छोड़ते नहीं, और मैं रात भर में उसको खत्म कर लेता था, अगले दिन फिर पहुंच जाता था। तो तंग आ गया वो आदमी मुझसे, घाटे वाली बात हो गई ना। तो उसने यही कहा कि चारण में कितनी किताबें दूंगा भाई मैं तुम्हें, तो नहीं। और ये ऊपर के शेल्फ से उसने एक किताब निकाली और मुझे ये ले जाओ, और नहीं है किताबें भी। That man didn't know कि उस एक वक्त में जब वो किताब निकाल रहा था वो मेरी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है। वो किताब उसने दी थी, उसका नाम था गार्डनर बाय टैगोर, नज्मों का ट्रांसलेशन था, पहली नज्म थी माली, बस वो किताब लग गई। That changed my total pattern of reading and picking up books and literature, जिसे कह सकते हैं आप। That became my passion.
0: Celebrating गुलजार साहब पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: खट खट।
2: Who there?
1: Who are you?
2: Who are you? Who?
3: अरे who are you looking for, madam?
2: खट खट। Who there?
4: Only on 89.6 Mirchi One. Mirchi, it's hot.
5: Mirchi stories.
6: बस 24 घंटे ही रहेंगी
7: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
8: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

ये पत्थर और मोम के जिक्र से बशीर बद्र साहब की ये गजल याद आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा, महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीने, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।